0: हाय बेबी,
1: एयरपोर्ट मत आओ, मैं नहीं आ रहा।
0: नहीं आ रही मतलब?
1: मीन्स आई एम नॉट कमिंग बैक, आई कांट।
0: बट आई लव यू।
1: जितना प्यार तुम मुझसे करती हो मैं उससे करता हूं।

मलाई परवाह छैन बोली केही रहेछौ है आँखाले केही भनी रहेछौ है बोलु त के भनेर